0: कई कोट आकाश ब्रह्मांड
1: कई कोट होए अवतार कई जूद कीनो विस्तार
0: कई बार पसरियो पसार सदा सदा एक एक अंकार
1: कई कोट कीने बपात प्राप्ते होए प्राप्त।

0: हुक्मे उपजै हुक्म सुमावै,
1: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार,
0: कर कर देखै अपनी बड़ियाई, नानक सब मैं रहया सुमाई,
1: प्रभ भावै मान गत पावै, प्रभ भावै ता पाथर त्रावै,
0: पप पावै बिन सास्ते राखै, पप पावै ता हर गुण पाखै,
1: प्रभ भावै ता पत उधारै, आप करै आपन विचारै,
0: दोहां सिरियां का आप स्वामी, खिलै बिकसै अंतर जामी,
1: जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै,
0: कहो मानुख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै,
1: जिसका हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे,
0: अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै,
1: भरमे भूला दै दिसतावै, निमक माहे चार कुंट फिर आवै,
0: कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नानक ते जन नाम मिले,
1: मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज,
0: जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल जय दिस प्रगटावै,
1: जाको अपनी करै बख्तीस, ताका लिखा न गणा जगदीस,
0: जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास,
1: अपनी बन ते आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई,
0: इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्व को नाथ,
1: आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योतिष भावै सोई पुन कियो,
0: कबू ऊंच नीच मैं बसै, कबू सोख हरख रंग हसै,
1: कबहु निंद चिंद व्यवहार, कबहु ऊब आकाश पयाल,
0: कबू बेता भरम विचार, नानक आप मिलावन हार,
1: कबहु नृत्य करै बपात, कबहु सोए रहै दिन रात,
0: कबू महाक्रोध विकराल, कबू सर्व की हो।

0: संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसा का नहीं मित्र।
1: संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे।
0: संत का दुखी महांकारी, संत का दुखी सदा भिखारी।
1: संत का दुखी जन्म में मरे, संत की दुख न सुखते टरे।
0: संत के दुखी को नाही खाओ, नानक संत पावे ता लय मिलाए।
1: संत का दुखी अदबीज ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पहुंचे।
0: संत के दुखी को ध्यान परमाइया, संत का दुखी उजड़ पाइया।
1: संत का दुखी अंतर ते तोता, जो सास बिना बिना मृत की लोता।
0: संत के दुखी की जड़ किचना है, अपन भी जापे ही खाए।
1: संत के दुखी को वरना राखन हार, नानक संत पावी ता ले उवार।
0: संत का दुखी यो बिल लाए, जो जाल बिहून मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पावक ईदन नहीं त्रापे।
0: संत का दुखी छुटा केला, जो द्वार तिल खेत वाहे दुहिला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सत मिद्या कहत।
0: कीर्तन नंद का सुरही पाया, नानक जो तिस पावा सुवस्या।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगे मिले सजाए।
0: संत का दुखी सदा सखाइया, संत का दुखी ना मरा ना जीवाइया।
1: संत के दुखी की पूजे न आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा।
0: संत का दुख ना तृष्टा कोए, जैसा पावा तैसा कोई होए।
1: भया कितना मिटे कोए, नानक जाने सच्चा सोए।
0: सब कर तिसकी उकरना हार, सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास।
0: सब का जो वर्ता तिसका

0: जिस प्रभु अपना कृपा करा तो सेवक को किसते डरा
1: अपने
0: कार्य में आप समाया।

0: को कौन अवतार है।
1: जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाए तब शिव सहु कहो पाए।
0: आपे आप अपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कत डरे।
1: आपन चल त्याग करना हार नानक
2: ठाकुर गम पार।
0: अविनाशी सुख अपने आसन ते जन्म मरण को कहा विनाशन।
1: जा पूरन करता प्रभु सोई जम की त्रास कहो किस होई।
0: जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चितर गुप्त किस पूछत लेका।
1: जब नाथ निरंजन अगोचर गाती तब कौन त्रुटि कौन बंधन भाती।
0: आपन आप आपिय चजा नानक आपन रूप आपिय परजा।
1: जय निर्मल पुरख पुरख पात्र होता तै बिन मैल कहो क्या तोता।
0: निरंजन रिंका निर्वाण तै कौन को मान कौन अभिमान।
1: जय स्वरूप केवल जगदीश तै चल चितर लत को कीस।
0: ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे पू कवन तृप्तावे।
1: कर्म करावन करना हार नानक करते का नाही सुमार।
0: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मृत सुत पाई।
1: जय सर्व कला आपे परबीन तै वेद तेव कहा को चीन।
0: जब आपन आप अवतारे तव सगन अपसगन कहा।

0: राष्ट्रपति।
1: आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार।
0: जात सुभावता सृष्टि उपाए, अपना भाया लय समाए।
1: तुम ते पिन नहीं कुछ होए, आपन सूत सब जगत परोए।
0: जाको प्रभु जी आप बुझाए, सत नाम सोई जन पाए।
1: समदर्शी तत्का बेता, नानक सगल सृष्टि का जे।

0: आप भला कर तू त्याग निकी आपे जाना है अपने जी की
1: आप साच सारी सब साच ओत पोत आपन संग राच
0: ताकि गत मत कही न जाए।

मिलाया। तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ बिंदु जा कोई नाहे। जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जान आए हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेविया तें सुख पाया, सहजे हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए।

दुष्ट शाश्वसक न कोई, एक बार जिंत मैं संभारा, काल फास्ते ताहे वारा। जिन नर नाम तिहारू कहा, दारे दुष्ट दुख ते रहा, खड़केत मैं सन तिहारी, आप हादल हो उबारी, सर्ब ठार मोह सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दुख अनको शय करता।

राख मोहे मन क्रम बचन विचार चौपाई। मैं ना गणेश प्रथम नाऊ किसन विसन कब होने त्याऊ कान सुने पहचान तिन सो लिबला गी मोरी पग इन सो महाकाल लखवार हमारू।

जब आयस प्रभ को भयो जन्म तरा जग आए। अमै कथा संक्षेप दे सबहु कहत सुनाए। कबे वाच दोहरा।

अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरु की देह मो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते रव सस करोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरगवास रघुवर कर सगरी पुरी समेत चौपाई।

ना मंगा मंग समस्तो पराजी समस्तास्तता मंग तेरा जोर चाचरी छंद। जले हैं थले हैं पीत हैं पे हैं प्रभु हैं चू हैं देश हैं पे सैं भजंग प्रयात छंद होगा देवा दे नंदी स्वरूपे नमस्माने समस्ती निदाने नमस्तों नरनाथे नमस्तों परमाथे नमस्तों गंजे नमस्तों पंजे नमस्तों काले नमस्तों पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साग साजे नमो साग साहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वभीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृसंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे तृपंगी नंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे खिजे बीजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे गुकर्मंग प्रणासी सदा सर्वदारित सिदंग निवासी चरपड़ चांद वै प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगे जल पोगे जल राजे टल साजे खल तरमंगला कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वं भुगता सर्वंग जूता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं बाले रवाल शांत वै प्रसाद आद रूप नाद मूर्त जोन पुरख पार सर्वंतर मान देव पेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व गोपन काल

सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान है सदा मंग प्रधान है।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सजदानन सतरंग प्रणासी ग्रीमल कुनिंदा समस्तल निवासी।

गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे पूत पवेख पान के भूपत कौन कनैनी जात बेचारे श्री पद श्री भगवान भजे बिनवंत कुवंत के दाम सुधारे तीर्थ नांद आदम दान सुसंजम नेम अनेक बसेख है बेद।

कहूं भूल राजा हवै बैठा कहो सिमट प्यो संग रखा सिगरी सिरट दिखाए चम भाव आजुगा सरो सम भाव ब्रछा मेरी तुम करो सिख्यो बार सिख संघरो दुष्ट जेते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण घाता।

रक्षा होय ताय सब काला, दुष्ट रिष्ट रजत काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताव तनक मैं हरि हो, रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह सब सकै न कोई।

ब्रह्म ज्ञान के तीर जे जब सुधा को खुद को चंदन ले ब्रह्म ज्ञान का एक नाम नानक जो पाव का सहस भाव ब्रह्म ज्ञानी द्रमतेन्द्र ला जैसे मैं न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रकाश जैसे तरु प्रकाश

ब्रह्म ज्ञानी सदा जागत ब्रह्म ज्ञानी बहुत त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कमन परमानंद ब्रह्म ज्ञान के कर सदानंद।

मंडल कई कोट ससियर सुर नखयत्र कई कोट देवदार इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धार नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर सास्तम।

जैसा भावै तैसा कोई होए, पया कीर्तन मिटै कोए, नानक जानै सच्चा सोए। सब घट तिसके उह करनै हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, उदसे त्यावहु सास गिरास।

परास्त गए। मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, पर्यात शरण आए।

हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्वै कुंठ मुक्त मोख पाए, एक निमुख हर के गुण गाए।

पूता माता की आशीष निमुख न विसरो। तुमको हर हर सदा भजो। जगदीश दे महावाक अनुसार सेवक परिवार भाई सुरेंद्र सिंह जी काजला, बीबी बलवीर कौर जी काजला जिन्हां दी खेड़ी हुई फुलवाड़ी, भाई सतनाम सिंह जी काजला, बीबी स्टैफनी, समूह परिवार ते आप जी ने बख्शिश की है, खुशियां दे समय बख्शिश किए हैं। बच्चे रियान संसार सिंह और बेटी अमीरा काजला, महाराजा आप जी ने भाई सतनाम सिंह बीबी स्टैफनी नू पुत्रां दीआं दातां और बेटी दी दात और भाई सुरेंद्र सिंह बीबी बलवीर कौर नू पोतरा और पोतरी दी दात बख्शिश की है। महाराज जी आप जी ने दित्तियां दातां दा शुकराना करदिआं होइआं समूह परिवार वालों गुरु घर विखे श्री सुखमनी साहब जी की बाणी दे जाप पुरन गुरबाणी कीर्तन कथा विचारा छे पौड़ियां आनंद साहब जी दे जाप होए। महाराज जी बाणी पढ़दे हां, कीर्तन करदे हां, कथा विचारा करदे हुए बेअंत फुलां दी खिमा बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी संगतां दे हिरदिआं दे वसा के नदरी नदर निहाल करना। समूह परिवार वालों आप जी का शुकराना करते हैं। सुंदर माला साहब भेटा करते हैं आप जी अंगीकार करने। सेवकां दे देसां परदेसां विच पढ़दे कजने आप जी दे हजूर कड़ा प्रसाद दी देख हाजिर है। आप जी भोग लाओ, भोग लगे आसीत प्रसाद, साध संगत वरताउण दी आग्या बख्शिश करो जो भी छके। आप जी का नाम सतनाम श्री वाहिगुरू वाहिगुरू जपे महाराज कृपा करनी। बेटे रियान संसार सिंह और बेटी अमीरा काजला दे सिर ते अपना मेरा भरिया हथ रखना। चढ़दियां गलां बख्शिश करनियां, माता पिता दे आग्या कर हुण दी सोझी बख्शिश करनी। कृपा करनी पातशाह जी पावन पित्र हुक्मनामे बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो जी। हुक्मनामे ते चलनी समर्था बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖਨ।

सुख होटल गुर सेविय अहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जियो।